बिना कारण शरीर को तौल घटी में जोर्नी को दुखाई ढाड़ कम्बर दुखी में गाउत तथा यूरिक एसिड को समस्या भाई में बारम्बार आँखा रातो भाई में फोक्सो में बारम्बार पानी भरिए र आईएलजी दम भाई में बारम्बार लामो समय सम्मा ज्वरो आएमा छालामा दाग अल्सर सूर्यासिस को दाग भाईमा लामो समय देखि छाला कड़ा भाईमा लामो समय देखि मांसपेशीमा कमजोरी तथा दुखाई भाईमा युवा अवस्थामा पक्षघात भाईमा मृगौला फेल भएको कारण बाथरोग हुन सक्छ एलर्जी सम्बन्धी समस्या

0: नियमित रूपमा निरीक्षण गरौं।
1: चुरोट बिडीको प्रयोग पश्चात आगो निभाउ, ठुटा जथाभावी नफालौं, वन जंगल, पेट्रोल पम्प तथा ग्यास डिपोको वरिपरि सलाई लाइटर तथा आगोको प्रयोग नगरौं।
0: घरमा मैनबत्ती, धूप र दियो बाल्दा विशेष सतर्कता अपनाऊ। नजिकै

0: गेछो छमेला खोरेला चाउछी पोलिए हरिदे तरिमकाई गेजम हेकेलाइजु अब नैजिले बनाए गेङ गेल गेजम हेकेमा लाए औलेम लायो के नाइगे
1: वनजंगल स जुडिसियो घेङबारी ल बाली नाली चिउला चिउली झ्याक्रा र सताउसु छिमी ने चाउसो सैदेके खेले
0: वनजंगल

0: 这么亲密，你早说个事呀？
1: 你那几年你带一个嘛，那个不是，什么二零嘛，你几个做呀？
0: 几处参了，不要了。你那有几双几呢？几处搞大家的呢？搞好的家的呢？搞啥？从村里搞管理的，搞家的管理的，你家的那个好不好的呢？
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सभा

0: मेलाडी माइलका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योनी मस्त र जरुरी सूचना झुङ पेला खिमरिदे गरम ओभरी जेउ पेला सुनो थोरी पता ओचुरी जेउ आउ पेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज सम्भावना चाहिए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नादे वातावरण मिले ने लख्यता असर केने रि मूल थाउने बुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो नाथार नामले ल मे लागिने सज जिमी किमे लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा दुख गिजिम
1: वन
0: जङ्गल सर मेरा आयुर्वेदी एमएल एमए सोछामेला लिउसोतर पोतरालाई पार बजे हटे
1: सलाई लाइटर स्याउला मे सोछामे चिज्रालाई जबाङजा र यामादेने पोल जेने या इतौ चिज र रहिदे वन जङ्गल याल के बाबा या
0: पिकनिक वन भोज बाक मे सोछाम छिन्नी मेले चाउसो सैदेखि खेनाए वन जङ्गल ओसो छाम्नु दाइके बारीको चुरोत विधि ओरे बनाई कुबाजेन के माथि
1: नाङथाङ नामलो लिज्यौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने हाल अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो गिरिए
0: गेसो छानेला खोरेल चाउसी खोरिए होगिदे तरिन गाई गेजो मेकेलाई जु अब नजिरे बनाई गेङ गेल गेजो मेके नलाए औलेन लायो के नाइए
1: वन जङ्गल छ जुडिसी हो गेङ बारी ल बालिनाली चिउला चिउली यात्रा चाउसो छिनी मे चाउसो सैदेखि खेले
0: वन जङ्गल मेलाइ गेमाइए मे अलागि तिमी पाँचजना खरनामा मिलिदिए भने सानो छ मे के सही
1: बतास उचुलिजु बेलाको घिजिमके कोटल मेकी सताङ्कीले हेन अखिम छिन्नी मे चाउसो के सही
0: मे लागि निमिताई के भने के पछि सुनो अरूले भने के पछि या
1: के छ छामला पोयाल मे लागि के सरकिनी के छका ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँ पालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोधक सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।